गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सभी का स्वागत है 107 FM रेनबो पर। आरजे अंकित आपके साथ और मैं आ चुका हूँ कार्यक्रम लेके दोस्तों, नॉनस्टॉप गपशप। सुबह के 10:02 हो चुके हैं दोस्तों और नॉनस्टॉप गपशप कार्यक्रम में दोस्तों मैं रहने वाला हूँ आप लोगों के साथ 11 बजे तक, यानी 11 AM तक। लेकर आया हूँ कुछ बेहतरीन ट्रैक्स आप लोगों के लिए। लेकिन नॉनस्टॉप गपशप में दोस्तों, जैसा कि आप कार्यक्रम के नाम से समझ गए होंगे कि मैं और आप करते हैं ढेर सारी बातें, ढेर सारी गपशप। गपशप करने के लिए दोस्तों लाता हूं एक टॉपिक, करते हैं हम उसी पर बात। तो दोस्तों आज मैं थोड़ा सा अलग हटके टॉपिक, यूनिक टॉपिक लेकर आओ, भले यूनिक ना हो लेकिन थोड़ा अलग हटके है, थोड़ा सा शोरगुल से परे है। जी हाँ दोस्तों, हम तो अक्सर ही शोरगुल के माहौल में रहते हैं, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो भीतर हो, चाहे हम कहीं भी जा रहे हो, चाहे ऑफिस में हो अपने कलीग्स के साथ, हम वहाँ बात करते हैं, शोरगुल में रहते हैं। चाहे हम कभी स्कूल कॉलेज जा रहे हो, वहाँ पे भी हम अपने दोस्तों यारों के साथ बातचीत करते हैं। अगर हम पार्टियाँ करते हैं तो वहाँ पे शोरगुल होता है यार, बातचीत करते हैं। हम घर पे भी टीवी रेडियो ऑन करके दोस्तों हम अपना फेवरेट शो देखते हैं, फेवरेट चैनल देखते हैं, या फेवरेट शो सुनते हैं रेडियो पर, या फिर मोबाइल घाटते रहते हैं। हम तो मतलब कहीं ना कहीं हम हमेशा शोरगुल के बीच में रहते ही हैं, शांति कहीं नहीं रहती है। तो मैं आप लोगों से दोस्तों ये जानना चाहता हूं कि कभी अगर आपको थोड़ा सा शांत रहने का मौका मिले, थोड़ा सा मौन रहने का मौका मिले, और अगर आप शांति की तलाश ढूंढते हैं या शांति की तलाश कर रहे हैं, तो आप वो क्या चीज करते हैं जिससे आपको शांति मिलती है या आपके मन शांत होता है और आप थोड़ा सा शोरगुल से भी हट जाते हैं। जो भी चीज आप करते हैं, जो भी प्लानिंग आप करते हैं या जो भी शेड्यूल आप करते हैं, आप आइए हमसे शेयर करिए। हमारा फोन नंबर है 2213-1341, ताकि आपका शेड्यूल, आपका प्लानिंग सुन के अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो वो भी शायद वो अपने लाइफ में ये शेड्यूल, अपने प्लानिंग अपना सके। और मैं भी, अगर मुझे भी कभी शांति की तलाश हो और आपकी राय मुझे अच्छी लग जाए, तो शायद मैं भी वो कभी अपने अपना अपने लाइफ में। तो आइए दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम इस पहले ट्रैक के साथ। और मैं भी दोस्तों आपको इस पीस के बारे में, इस शांति के बारे में पूरे कार्यक्रम में बताते रहूंगा थोड़ा थोड़ा करके, और आप भी मुझे थोड़ा थोड़ा अपने प्लानिंग के बारे में बताते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम इस पहले ट्रैक के साथ।

0: फिल्म आवारापन 2 से दोस्तों आप सुन रहे थे अखिल सचदेवा की आवाज में ट्रैक, कंपोजिशन ऑल ए डिसिस्ट दोनों ही थे अखिल सचदेवा के। और दोस्तों आइए, एक दोस्त आ चुके हैं फोन लाइन पे, कर लेते हैं उनसे बात। हेलो
1: जी, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन है तुम्हारे साथ फोन लाइन पे?
1: जी सर, मैं मोहम्मद नासिर, गलियाघाटा कोलकाता से।
0: नासिर जी, वेलकम टू माय शो। बताइए आप कैसे शांति ढूंढते हैं?
1: जी सबसे पहले तो सर, मैं, मेरा आज पहली बार आपसे बात हो रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत सर शुभकामनाएं देता हूँ सर आपका।
0: थैंक यू सर।
1: और मैं, जी सर, मैं रहने वाला हूँ बिहार दरभंगा का, और अक्सर मेरी पापिया जी से और रोशन सर से अक्सर बात होती है। आज से बात, पहली बार मुझे बात करने का मौका मिला, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: थैंक यू सर।
1: और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक गांव का व्यक्ति हूँ, और अक्सर

0: सर मैं कोलकाता अपने बिजनेस कारोबार के सिलसिले में आता जाता रहता
1: हूँ। अच्छा,
0: तो सर मैं ये अपने लिए नहीं बल्कि सारे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी के जनरेशन है या जो अभी का जो जिंदगी हम तमाम लोगों का चल रहा है वो काफी भागदौड़ की जिंदगी है और जरूरत के हिसाब से भागदौड़ करना ही पड़ता है क्योंकि हमारी जिंदगी है कभी बहुत बिजनेस के सिलसिले में, कभी कारोबार के सिलसिले में, कभी बच्चों के सिलसिले में, जो जिंदगी का कंडीशन है उसके हिसाब से चलना ही पड़ता है।

0: इन तमाम चीजों से अगर कभी भी मुझे मौका मिलता है
1: जी.
0: तो मैं से पहले कोशिश करता हूँ कि मैं अपने खाली वक्त को एक शांति जगह, शांति जगह कहने का मतलब है कि सर जहाँ पे सिर्फ पेड़ ही पेड़ हो, हरियाली ही हरियाली हो, और एक चिड़िये चहचहाते हो, पक्षी चहचहाते हो, पक्षी हो वहाँ पे,
1: हाँ.
0: तो वहाँ पे मैं अपने खाली वक्त गुजारता हूँ और अपने रिश्तेदारों के साथ गुजारता हूँ. या वो बहुत सुकून मिलता है सर, मुझे बहुत सुकून मिलता है. जी
1: थैंक यू आशीष जी बताने के लिए.
0: जी सर, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था सर, बाकी लोगों का भी अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने जो सोचा है वो हमारे लिए और कुदरत के चीज दिए हुए चीजों के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा होता है.
1: बिल्कुल, आप सही करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं. आप ये हरियाली के बीच में अपने शांति टाइम गुजारते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं.
0: जी,
1: थैंक यू नासिर जी आने के लिए फोन लाइन पे, और ऐसी हमसे आते रहिए हर बार और जुड़ते रहिए. शोरगुल से जूझते शहर में शांति एक ऐसी चीज बनती जा रही है जिसे लोग सक्रिय रूप से तलाशते हैं. ये सिर्फ ध्वनि से राहत पाने के जरिया नहीं बल्कि ध्यान देने का एक तरीका है, चाहे वह किसी किताब पर हो, संगीत की किसी रचना पर हो, कलाकृति पर हो या स्वयं पर. मौन पठन और श्रवण सत्रों से लेकर एक ऐसे कला स्थल तक जो अंग कृतों को रोकने, सांस लेने और बस शांत रहने के लिए आमंत्रित करता है. विभिन्न प्रारूप है पता लगा रहे हैं कि जब हम जानबूझकर शांति के लिए जगह बनाते हैं तब क्या होता है.

0: फिल्म दम मारो दम से दोस्तों मोहित चौहान की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक प्रीतम का कंपोजिशन जयदीप सहनी के बोल। और दोस्तों जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया उन्हें बता दो कि 10:16 AM हो चुका है। आरजे अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है नॉन स्टॉप गपशप। और आज नॉन स्टॉप गपशप में मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि हम तो हमेशा ही शोरगुल के बीच में रहते हैं, आवाजों के बीच में रहते हैं, थोड़ी मानसिक तनाव के बीच में रहते हैं, लेकिन अगर हमें कभी शांति की तलाश करनी है और अगर शोरगुल से दूर जाना है तो उस समय आप क्या करते हैं, आप कौन सा प्लानिंग करते हैं, कौन सा स्टेप अपनाते हैं या क्या क्या चीज़ें से करते हैं जो आप शोरगुल से दूर हो जाते हैं और शांति के करीब चले जाते हैं। जो भी आपके मन में है, राय है, जो भी प्लानिंग आप करते हैं, आइए हमसे शेयर करिए। हमारा फ़ोन नंबर है 2213-1341 पर ये नंबर डायल करिए और हमसे जुड़िए और अपनी बातें शेयर करिए। और एक फ्रेंड जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, आइए उनसे भी कर लेते हैं बात। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग अंकित
0: जी। गुड मॉर्निंग, कौन है तुम्हारे साथ फोन लाइन पे?
1: मैं मनोरंजन लश्कर बात कर रहा हूँ, नौकरी से पहले लाहौड़ा से।
0: हाँ जी मनोरंजन जी, बताइए आप कैसे शांति की तलाश करते हैं?
1: सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना रियल टॉपिक लाने के लिए और इतना अच्छा अच्छा खूबसूरत गाना बजाने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।
1: देखिए अंकित जी, जब शोरगुल होता है लगभग दौड़ में तो हम सब लोग को शांति लुटता है।
0: बिल्कुल,
1: मैं जो तरीका अपनाता हूँ वो हमारा घर के पास में जो है नदी है, गंगा नदी है, जो बहुत ही सुनसान है, उसका किनारा बहुत ही अच्छा है, इंसान है और जो नहीं है, तो जब मैं शांति चाहता हूँ या शोर के लिए सीखना चाहता हूँ तो उस नदी के किनारे में जाकर बैठे, पेड़ के नीचे बैठे,
0: अच्छा
1: ये बटघाट है, बटघाट के नीचे बैठे और नदी के किनारे जो नदी का जो नौका चलता है, लॉन्च चलता है, जहाज चलता है, तो इसका जो दृश्य है तो मैं दिल में अपनाता हूँ। बैठा था पेड़ में नीचे शांति से बाहर
0: मिल जाकर, मतलब आप वहाँ जाके सीनरी का पूरा अच्छा एंजॉय करते और शांति से भी जुड़ जाते हैं।
1: वहाँ कोई शोरगुल नहीं है, कोई सुनसान है, जब शांति मिलता है।
0: थैंक यू आने के लिए फोन लाइन पे और बताने के लिए कि आप क्या करते हैं जब आप शोरगुल से दूर जाना चाहते हैं। और दोस्तों अगर आप भी जाना चाहते तो पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप एकदम शोर शराबे से दूर अगर आप मौन पठन पढ़ने को एक साझा लेकिन एकांत अनुभव में बदल देता है। एक कुछ लोग जो पढ़ते हैं दोस्तों एकांत में, वो बताते हैं कि ये एक प्रारूप एक पूर्व बैठक के बाद सामने आया जिससे ये पता चला कि क्या कमी थी, हमें पढ़ने के वास्तविक पहलू की कमी खल रही थी। ये सत्र सभी को जुड़ने के लिए एक शांत स्थान प्रदान करते हैं। पढ़ने की सुस्ती से उबरने का रास्ता मिला जबकि मौन और अकेले रहने की स्वतंत्रता का वो महत्व दिया। इससे सहभागिता और सामाजिक मेलजोल का अवसर मिला और नई विधाओं को जानने और

फिल्म आरक्षण से दोस्तों आप सुन रहे थे मोहित चौहान, श्रेया घोषाल और न्यूमैन की आवाज में ये गीत। संगीत से सजाया था शंकर एस लॉय ने और बोल से संवारा था प्रशून जोशी ने। दोस्तों मौन हमें धीमा होने और स्वयं से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। TRI आर्ट एंड कल्चर द्वारा क्यूरेट की गई ये प्रदर्शनी प्रकाश, स्थान और स्थिरता के माध्यम से एक चिकित्सीय विराम का अन्वेषण करती है। TRI आर्ट एंड कल्चर की क्यूरेटोरियल एसोसिएट बताती हैं कि हम विश्राम या मौन को जुड़ाव की अनुपस्थिति के रूप में नहीं देखते, वे हमारे शरीर और इंद्रियों के साथ जुड़ाव के रूप में भी हो सकते हैं। एक कलाकार कहती है कि अपनी प्रकाश आधारित कृतियों के माध्यम से अंतर्बोध का अन्वेषण करती है। वह कहती है कि मेरी बनाई मूर्तियां उस जागरूकता को सतह पर लाने और हमें इन आंतरिक लय को महसूस कराने के लिए डिजाइन की गई है। और दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं कि हम किस तरह से इस शोरगुल से, इस शोर शराबे से और इस नॉइज पॉल्यूशन से थोड़ा सा दूर हो जाएं, थोड़ा सा शांति के माहौल की तरफ लौट जाएं और पीस ढूंढे, तो आप सोच रहे होंगे कि हम शायद इस दुनिया से थोड़ा सा छूमंतर हो जाएं और किसी पीस के तरफ, किसी शांति की तरफ चला जाए। तो अगला ट्रैक दोस्तों आप लोगों के लिए है।

0: फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन से दोस्तों आप सुन रहे थे। ये गीत बेनी दयाल आदित्य सिंह शर्मा की आवाज में, सोहिल सेन का संगीत और इरशाद कामिल के बोल। साइलेंट लिसनिंग सेंसेशन से संगीत एक साथ साझा एकांत का अनुभव साझा किया जाता है, जिसमें लोग एक ही स्थान पर बैठकर व्यक्तिगत रूप से संगीत सुनते हैं। एक व्यक्ति जो इस तरह का एक कार्यक्रम चलाते हैं, इसे एक ऐसा अनुभव बताते हैं जहां हर कोई एक ही टेबल पर अपनी अपनी पार्टी मना सकता है। प्रतिभागी संगीत शैली से संबंधित पैच चुनते हैं, ईयरफोन लगाते हैं और संगीत सुनने के लिए एक कोड स्कैन करते हैं। उनके अनुसार संगीत को पेय के साथ मिलाने में एक गहन भावनात्मक अनुभव प्राप्त होता है। एक व्यक्ति कहती है जो इस तरह के सत्रों का आयोजन करने वाले एक समूह के सह संस्थापक है, कहती है कि ये प्रारंभ लोगों को संगीत पूरा ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों 10:29 AM हो चुका है, आरजे अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है नॉनस्टॉप गपशप आपके अपने चैनल पर यानी 107 FM रेनबो पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे अंकित, रहूंगा 11 बजे तक आपके साथ। और आज दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इसका कार्यक्रम में नॉनस्टॉप गपशप में कि हम तो शोरगुल के माहौल में हमेशा रहते हैं, आवाज में रहते हैं, नॉइस पॉल्यूशन में रहते हैं और मानसिक टेंशन में रहते। तो दोस्तों अगर हम इन सब से दूर जाना चाहते हैं और अगर आप भी दूर जाना चाहते हैं तो आप कौन सा स्टेप अपनाते हैं, आप ऐसा क्या करते हैं जो आप इन सब माहौल से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, आप शांति की तलाश में रहते हैं और शांति आपको मिल भी जाती है, आप पीस ढूंढते हैं पीस भी आपको मिल जाता है। और दोस्तों एक जरूरी सूचना, 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2026 को अपराह 12:30 मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवा और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पात्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्व ब्योरा का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल ID cpmg_wb@indiapost.gov.in या फिर adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/9/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संचार 0332212025 या 0332212612 या 0332212500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखना होना चाहिए। उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामले एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर, FM रेनबो पर।

0: लव ब्रेकअप और जिंदगी से। दोस्तों आप सुन रहे थे एक ट्रैक सलीम मर्चेंट, शफकत अमानत अली और श्रुति पाठक की आवाज में, सलीम सुलेमान का संगीत, जावेद अख्तर के बोल। और हमारे साथ एक और दोस्त जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पे कर लेते हैं उनसे बात। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्ते, कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: नमस्कार, राधे राधे।
0: राधे राधे, नमस्कार। बोलिए कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: मैं श्याम कुमार चंचल बोल रहा हूँ, मानिकपुर से।
0: हाँ जी, बताइए आप क्या करते हैं शांति की तलाश में?
1: अंकित जी,
0: जी
1: कि जब भी मेरी शांति भंग होती है तो मैं, सबसे अच्छा मुझे लगता है कि मैं अपने रेडियो के साथ रहता हूँ और हिंदी जो गीत हैं पुराने मैं सुनता हूँ, उनको सुनकर अपना दिल बहलाता हूँ।
0: अच्छा,
1: और भी मेरे पास एक ऑप्शन है कि आज से 45 साल पहले मैंने घर बना लिया है।
0: अच्छा,
1: सुंदरबन नाम खाना जो कागदीप नाम खाना है और बॉक खाली है, वहाँ एक बॉक खाली है तो वहाँ उसके आसपास मैंने घर बना लिया है आज से 45 साल पहले। तो हम लोग वहाँ भी जाते हैं और यहाँ कलकत्ता यहाँ भी हम रहते हैं, तो यहाँ से हमारा 150 किलोमीटर का दूरी है
0: जी।
1: तो हम वहाँ चले जाते हैं, हरियाली है चारों तरफ, सुनसान रहता है और बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ भी मेरे साथ रेडियो रहता है, मैं अपने मन पसंद गीत बजाता हूँ और सुनता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। यही मेरा एक तरीका है और यही मेरा सोचना है।
0: तो आपके अपने परिवार के साथ जाते हैं वहाँ पे कि अकेले जाते हैं?
1: नहीं, बिल्कुल मेरे परिवार है वहाँ, बच्चे हैं वहाँ, बहू है, नाती है, सभी हैं लोग मेरे।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ मैं चला जाता हूँ, कुछ दिन बिता के आता हूँ।
0: चलिए अच्छा, एक छोटा मोटा पिकनिक भी हो जाता है आपको और आप शांति भी ढूंढ आते हैं वहाँ पे।
1: मैं तो ये कहूँगा अंकित जी, हमारे गांव आइए,
0: बिल्कुल
1: देखिए, वो गांव बहुत अच्छा सुंदर है।
0: जरूर जरूर आऊंगा,
1: यहाँ पर मनोरम स्थान है, बहुत सारी जगह है घूमने है और टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ, समुद्र किनारा है, बहुत अच्छा लगेगा आपको।
0: बिल्कुल, मैं भी आऊंगा, आप लोगों से मिलूंगा और मैं भी वहाँ थोड़ा सा एंजॉय करूंगा आप लोगों के साथ। और शांति कहाँ मिलेगी? अगर आप लोग दोस्तों ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा टिप आपको दे सकता हूँ। रविंद्र सरोवर में एक शांत जगह चुने और किताबों में खो जाए, हेडफोन पीछे छोड़ दें और झील के चारों ओर घूमें। ध्यान सत्र या शांत चिंतन स्थल में समय बिताने का प्रयास करें। एक कोई भी गैलरी पर चले जाएं और बिना खर्च करे एक काम के साथ समय प्रदर्शनी में जल्दी जल्दी घूमते रहें। अपनी डायरी में लिखें, स्केच बनाएं या बस अपने विचार लिख लें। किसी पठन, श्रवण या अन्य मौन सभा में शामिल हो और लोगों से बातचीत किए बिना उनके बीच रहने का अनुभव करें। और दोस्तों जब भी आप शोरगुल में रहते हैं तो शांति दूर खड़े सोचती है कि कितना दिन ये शोरगुल में रहेगा, झक मार के कभी ना कभी मेरे पास तो जरूर आएगा।

0: फिल्म देसी बॉय से दोस्तों नीरज श्रीधर और हर्षदीप कौर की आवाज में आप सुन रहे थे ये ट्रैक। प्रीतम का कंपोजिशन इरशाद कामिल के बोल और हमारे साथ एक और फ्रेंड जुड़ चुके, करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते, कौन है सर फोन लाइन पे?
1: गुड मॉर्निंग भैया, मैं जीतू बात कर रहा हूँ उड़ीसा से।
0: गुड मॉर्निंग जीतू, बताओ तुम कैसे शांति की तलाश करते हो?
1: जी बिल्कुल जी भैया, और आपका जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है।
0: थैंक यू।
1: और बहुत दिन बाद आज आए हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, बताओ।
1: और मैं इसमें यही बोलना चाहूंगा कि जैसे कि शांति, जैसे कि मेरे लिए शांति तो है तब जब हम जाते हैं कहीं, है ना, घर में जाते हैं आराम से वहाँ बैठते हैं और बैठकर वही जो होता है थोड़ा बहुत जैसे गाना सुन लेते हैं।
0: अच्छा,
1: अब वो भी जैसे कि होता है तो गाने भी सुनने से हमको थोड़ा सा शांति मिल जाता है, है ना। मान मतलब ऐसे बहुत दिन हो जाएगा, बहुत दिन ऐसे हो जाता है और हम गाने नहीं सुन पाते हैं।
0: अच्छा।
1: तो अजीब सा सब, मतलब मेरा माइंड मतलब अजीब सा होने लगता है।
0: तो किस टाइप के गाने पसंद है तुमको?
1: मुझे तो गाने ऐसे पुराने भी पसंद है और पुराने तो अच्छे लगते ही है और साथ में अभी जो नए नए आते हैं वो भी मैं सुन लेता हूँ।
0: अच्छा।
1: और जैसे कि पुराने गाने होते हैं तो पुराने भी हमको अच्छे लगते हैं, दोनों मतलब बोलते हैं दोनों, लेकिन नंबर वन पे मैं बोलना चाहूंगा पुराना ही।
0: पुराने गाने, जी हाँ, पुराने गानों की बात ही अलग थी।
1: हाँ, और पुराने गाने के जरिए से ही अभी न्यू गाने भी आ रहे हैं।
0: बिल्कुल सही बोल रहे हो।
1: तो मैं अपना नया गाना मैं सुनना पसंद नहीं करता हूँ, फिर भी मैं सुनता हूँ, है ना, क्योंकि अब जैसे जैसे चलेगा, है ना, बोलते हैं जैसे जैसे चलना है वैसे ही चलना है हमको। उस समय था जब दौड़ था तो उस समय पुराने चल रहे थे, है ना।
0: आप
1: इस समय जो है नए नए मतलब पुराने गाने के लिए लेकर

0: रिमिक्स लेकर अभी बन रहे हैं नया, तो नया भी सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, बॉलीवुड से जुड़ा जुड़ा हुआ मतलब रहता है। और बताया भी जाता है कि इस फिल्म से था, इसका रिमिक था, और इसने मतलब, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि पुराने जो फिल्में हुआ करते थे तो फिल्में भी अच्छा हुआ मतलब दिला करते थे देखने में, और अभी की जो फिल्म होते हैं वो एक बार देख लेते थे तो फिर दोबारा देखने में जो है मन नहीं करता है। पहले जो फिल्म देखते थे तो उसमें क्या होता था कि चलिए एक बार देख लिए, फिर बोलते कि अरे इस फिल्म से बहुत दिन हो गया है, एक बार और देख लेते हैं।
1: सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को आज की फिल्म को ज्यादा देखना पसंद है, किसी को पुराने फिल्म देखना पसंद है।
0: और आपका जो टॉपिक है शांति, तो वही मैं गाना भी सुन लिया करता हूँ, और जैसे कि मूवी वगैरह होता है तो बस देखता हूँ शांतिपूर्वक, कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना।
1: चलो
0: तो बस यही बोलना चाहूंगा टॉपिक के बारे में।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आते रहो जीतू, और हमसे जुड़ते रहो हर बार हर कार्यक्रम में। ऑल्सो 10:46 AM हो चुका है, आरजे अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है नॉनस्टॉप गपशप, और मैं बात कर रहा हूँ कि आप शोरगुल से दूर, मानसिक तनाव से दूर, शोर शराब से दूर, नॉइज पोल्यूशन से दूर किस तरह से शांति की तलाश करते हैं, किस तरह से पीस की तलाश करते हैं, और आप कौन कौन से कदम उठाते हैं, कौन कौन से स्टेप लेते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं ताकि आपका मन पूरा शांत हो जाता है। वहां पे आइए, हमसे शेयर करिए, हमारा फोन नंबर है 2213-1341।

0: लेडीज वर्सेस फ्रीक की बहस से दोस्तों आप सुन रहे थे विशाद दलानी, श्वेता पंडित की आवाज में, ट्रैक सलीम सुलेमान का संगीत, और हमारे साथ एक और दोस्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: बेलगरिया से शुभजीत बोल रहा हूँ।
0: शुभजीत जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज आप?
1: ऐसे तो मुझे लगता है कि अगर सुकून ढूंढना है तो घर से ही ढूंढ लो, क्योंकि हमेशा तो बाहर जाने का मौका मिलता नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं अक्सर क्या करता हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम, मी टाइम जो बोलते हैं वो चाहिए, तो मैं अपना दरवाजा घर का ढूंढता, दरवाजा बंद करता हूँ, थोड़ा एक ज्यादातर डिवोशनल या स्पिरिचुअल कुछ मंत्र सुनता हूँ।
0: अच्छा।
1: वो काफी सुकून देता है। और ऐसा होता है कि जैसे गायत्री मंत्र हुआ या फिर हनुमान चालीसा हुआ, फिर सुनेंगे तो या ओम, जस्ट ओम, तो अगर सुनेंगे तो वो एक टाइम है जो खुद का टाइम है।
0: अच्छा।
1: उसके अलावा कुछ नहीं। और कभी कभार अगर कहीं जाने का मन हो तो पहाड़ में हिली कहीं जाने, हिली रीजन में जाने का मन करता है, तो कभी कभी जाता, साल में एक दो बार जाना हो जाता है।
0: अच्छा।
1: तो वहां जाने के बाद ऐसा लगता है कि शायद हम लोग कुछ दूसरी दुनिया में है।
0: बिल्कुल।
1: तो वहाँ के लोग, वहाँ का माहौल ऐसा है कि जब आप वापस आते हो तो अजीब किस्म का एक फीलिंग आता है कि अरे अरे, कोई हसल बसल वाला जिंदगी। और कोलकाता में भी ऐसे पूरा आउटस्कर्ट्स में ऐसा जगह है, जैसे बीच में एक बार मैं बारासात गया था, तो वहाँ पर चापाडाली मोड़ बोल के एक जगह है, तो वहां से एक नजदीक में एक ऐसा अलग ही जगह जहाँ पर मतलब एक शायद एक कॉलेज कैंपस के बाहर एक जगह था, वहां पर तो वहां का माहौल ऐसा था कि पूरा गांव,
0: अच्छा,
1: पता नहीं चला कि बारासात में इतना एकदम प्रॉपर सिटी के अंदर और टाउन में है, लेकिन वहां पर एक माहौल था पूरा गांव। तो कभी कभी वहीं चला जाता हूँ।
0: अच्छा।
1: अगर जाने की, क्योंकि दोस्त लोग वहां रहते हैं तो कभी जाना होता है।
0: तो ये जो मेडिटेशन करते हो, रोज करते हो?
1: रोज नहीं होता है, लेकिन हफ्ते में तो कर ही लेता हूँ।
0: अच्छा।
1: और मुझे लगता है वो सबसे अच्छा है, अगर आपको 5 मिनट भी मिले सोने से पहले तो हेल्प करता है, क्योंकि जब मेरा बहुत स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटीज होता है, तो होता है, सबका ही होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो फील होता है, आप अपना पल्स अगर कुछ चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि आप बहुत, अगर स्ट्रेस है तो पल्स इतना दौड़ता है। लेकिन वो जो आप हेडफोन में सुनिएगा, क्योंकि वही एक मतलब जो अभी तो सब ऐसा है कि नो नॉइज, कैंसिलेशन इतना अच्छा रहता है हेडफोन में, तो आप अगर सुनेंगे थोड़ा बहुत, स्पेशली अगर ओम सुनेंगे तो उसका कोई अलग ही मैजिक है। तो वो करता हूँ, वो हेल्प करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक दो दिन में उसका फायदा आपको पता चल जाएगा।
0: हाँ, उसको लगातार करना पड़ेगा।
1: जी, लेकिन मुझे लगता है सबसे इजी वाला है कि अपना घर में,
0: घर पे। जी, सही बोल रहे हो।
1: जी, तो हम भी चाहेंगे कि आप भी अपना बारे में जाते जाते, जब आप शो लास्ट में एंड में है, तो आप भी हम सब श्रोताओं को बताइए कि आप कैसा इसको टैकल करते हैं।
0: मैं जब अगर थोड़ा सा प्रेशर फील करता हूँ या थोड़ा सा शोरगुल से दूर जाना चाहता हूँ या फिर किसी टेंशन से दूर जाना चाहता हूँ, तो मैं अपने घर पे ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि घर से ज्यादा शांति और कहीं नहीं है। घर पे रहो, चुपचाप रहो, थोड़ा अपने आप को टाइम दो, बस फिर बाकी अपने आप ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा।
1: क्योंकि इतना लाइफ में इतना प्रेशर है, आप कहाँ जाएंगे?
0: बिल्कुल,
1: जाएंगे
0: कहाँ? सही बोल रहे हो।
1: क्योंकि गांव में आप अगर रहेंगे ना, अगर सिटी के बाहर से कि आप गांव में रहते हैं, तो वहां पर जगह है, क्योंकि आप घर से भी बाहर, जैसे कि घर में कुछ टेंशन चल रहा है, तो आप जब गांव में रहते हैं तो बाहर जाने से ही आपको वो नेचर के चीजें आपको मिलेंगी जो आप जा सकते हैं। लेकिन शहर में रहने से आप अपना फ्लैट या घर से बाहर जाएंगे तो वही शोर शराबा।
0: वही, सही बोल रहे। आने के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़ते रहो हमेशा और अलग अलग टॉपिक पे बात करते रहो। और मौन श्रवण अजनबियों के बीच व्यक्तिगत रूप से संगीत का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है, साथ ही सामाजिक मेलजोल के लिए भी गुंजाइश छोड़ता है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के लास्ट ट्रैक की तरफ आप लोगों के लिए।

फिल्म गोलमाल 3 से दोस्तों सुन रहे थे हमारे कार्यक्रम का लास्ट ट्रैक नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की आवाज में, प्रीतम का कंपोजिशन और कुमार के थे बोल। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा कार्यक्रम होता है यही समाप्त। आपके दोस्त आरजे अंकित को दीजिए इजाजत, मिलूंगा फिर आप लोगों से मैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अ वेरी हैप्पी वीकेंड, और ऐसे ही सुनते रहिए, साथ रहिए और शांति की तलाश करते रहिए। जैसे कि वादा रहा, मिलता हूँ जल्द फिर आप लोगों से। तब तक के लिए एंजॉय करिए अपना टाइम।

0: 3:02 आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी कोलकाता 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक। दोस्तों आप सुन रहे हैं इस वक्त अपनी आरजे भारती को, रहूंगी मैं आपके संग 4 बजे तक शाम के, और इस वक्त रहेगा आपके लिए कार्यक्रम 3 का तड़का। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए परियोजना प्रस्तुति।
1: 107 एफएम रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: परियोजना प्रस्तुति में आज जिस सरकारी परियोजना की बात करेंगे वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। जी, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दोस्तों ये योजना 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, राजमिस्त्री, दर्जी, नाई, धोबी, मूर्तिकार जैसे पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के दौरान दैनिक भत्ता, आधुनिक औजार खरीदने के लिए सहायता तथा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा कारीगरों को डिजिटल लेन देन और अपने उत्पादों की ब्रांडिंग एवं विपणन में भी सहायता दी जाती है। इससे उनके पारंपरिक हुनर को आधुनिक बाजार से जोड़ने में मदद प्रदान होती है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य कारीगरों की आय बढ़ाना, उनके कौशल का विकास करना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है। यह योजना भारत की समृद्ध पारंपरिक कला एवं शिल्प को संरक्षित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हुनर को सम्मान और कारीगर को पहचान, यही है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की पहचान। दोस्तों प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केवल आर्थिक सहायता देने वाली योजना नहीं है, बल्कि ये देश के पारंपरिक कारीगरों को सम्मान, कौशल और आत्मनिर्भरता प्रदान करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आज आपने परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत सुना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में।
1: 107 एफएम रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
2: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का 107 एफएम रेनबो पर 3 का तड़का 107 FM Rainbow Pad Rainbow Pad Rainbow Pad
0: कार्यक्रम 3 का तड़का में मैं हूं आज आपके संग, आपकी आज ये भारती, रहूंगी शाम के 4 बजे तक और रहेंगे आपके लिए हिंदी फिल्मों से जुड़ी कुछ खबरें और साथ ही बेहतरीन तराने भी। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अरिजीत सिंह और शारवा पारुलकर की आवाज में इस गीत के संग, जहां सर आंखों पे मेरे। गीत के बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के, संगीतकार शंकर एहसान लॉय, फिल्म का नाम सितारे जमीन पर।

सर आंखों पर रखने वाली एक खबर है। गोंधल बनी है भारत की 2027 ऑस्कर की आधिकारिक एंट्री। जी हाँ, संतोष दावकर की मराठी फिल्म गोंधल को 99 एकेडमी अवार्ड्स के इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है। दोस्तों 33 फिल्मों में से गोंधल का चयन हुआ है, तो ज़रूर ये फिल्म एकदम खास है और है ये भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का, अपनी आरजे भारती के संग, और आपके संग रहूंगी शाम के 4 बजे तक, लेकर बेहतरीन तराने और बॉलीवुड की कुछ खास टिडबिट्स। लेकिन साथ में बेहतरीन तरानों के साथ जब बात हो रही है तो ये ट्रैक तो भाई एकदम बोलते हैं ना फूड ट्रैपिंग वाला सॉन्ग है। मोहित चौहान पैदी फिल्म से, रकीब आलम है गीतकार, संगीतकार AR रहमान। यस यू गेस्ट इट राइट, चिकरी चिकरी ये ट्रैक आप इस वक्त सुनेंगे। समय हुआ है इस वक्त 3:12 और 10 सेकेंड।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तीन का तड़का अपनी आरजे भारती के संग और आप सुन रहे हैं इस वक्त आकाशवाणी कोलकाता का 107 एफएम रेनबो। आपको बता दें हम कि अजय देवगन की फिल्म है रेंजर जिसकी रिलीज डेट है वो टल गई है। इस फिल्म के स्टार कास्ट में है अजय देवगन, संजय दत्त, तमन्ना भाटिया और इनकी ये जो फिल्म रेंजर है अब 2027 में आने की खबर है। इसका पहले दिसंबर 2026 में रिलीज होने की बात थी। दोस्तों गोलमाल 5 की भी आधिकारिक घोषणा रोहित शेट्टी ने की है। अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर सहित प्रमुख कलाकारों के साथ गोलमाल 5 की भी पुष्टि की गई है। फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। और दोस्तों आने वाले समय में वहीदा रहमान को फिल्मों में खास कमबैक करते हुए हम देखेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार वहीदा रहमान सुधीर मिश्रा की आगामी फिल्म में महात्मा गांधी की मां पुतली बाई की भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म में मनोज वाजपेयी ने महात्मा गांधी की भूमिका अदा की है। जानेंगे आने वाले मिनटों में कि क्या रहा बॉक्स ऑफिस पर कल रिलीज हुई दायरा का हाल और साथ में ही बात करेंगे उसके पहले रिलीज हुई फिल्मों का अभी बॉक्स ऑफिस में क्या है हर्ष। तो इस वक्त हम जो गीत आपके लिए पेश करेंगे वो है अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज में धुरंधर का ये ट्रैक। आप दोस्तों सुन रहे हैं कार्यक्रम तीन का तड़का और इस वक्त धुरंधर फिल्म से गहरा हुआ।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता 107 एफएम रेनबो और इस वक्त 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत से संबंधित एक विशेष सूचना। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को अपहरण 12:30 मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एससी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा का ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और यह डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित रहें। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050 या 0332212612 या 0332212050 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत या पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। उपयुक्त सारी डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना यहीं समाप्त हुई।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तीन का तड़का 107 FM रेनबो पर, अपनी आरजे भारती के संग, और इस वक्त बात करेंगे रिलीज हुई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की। हनुमान अंश का शानदार प्रदर्शन जारी है। फिल्म ने 43वें दिन तक लगभग 316.30 करोड़ वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन दर्ज किया है। कुणाल खेमो की वाइब भी कल रिलीज हुई, जिसने फिल्म ने पहले ही दिन करीब 150 करोड़ नेट की कमाई की है, जो दायरा की धीमी शुरुआत से काफी है। जी हां, दायरा करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म ने पहले दिन लगभग 90 लाख कमाए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी चर्चा में है थम्मा को लेकर। उन्हें इंडिया गॉट टैलेंट में मजाकिया अंदाज में रोस्ट किया गया है। और बात करें हम करण जौहर की, तो करण जौहर और प्रिंस विलियम मुंबई में होने वाली अर्थ शॉट प्राइज 2026 से जुड़े कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तीन का तड़का, जहां हम आने वाले मिनटों में भी आपको सुनाएंगे कुछ बेहतरीन तराने, और साथ ही रहेंगी कुछ हिंदी फिल्मों और बॉलीवुड से जुड़ी खबरें। सुनते रहिए, साथ रहिए। कार्यक्रम में आगे अरिजीत सिंह, खामोशियां।

दोस्तों आज कार्यक्रम तीन का तड़का आप सुन रहे थे अपनी आरजे भारती के संग, और इस वक्त इस कार्यक्रम से दीजिए मुझे यहीं पे इजाजत। मुलाकात होगी आपसे ठीक आज ही के दिन कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स में, ठीक 5:15 पर एफएम गोल्ड पर हाजिर रहूंगी मैं आपके संग। सुनते रहिए, साथ रहिए। जाते जाते आप सभी के लिए जुबीन नौटियाल की आवाज में ये ट्रैक, फिल्म का नाम है तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी। सुनते रहिए, साथ रहिए।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: जाने अनजाने।
2: सात बजकर 3 मिनट 15 सेकंड, एकदम वादे के मुताबिक आ गई हूँ आपके सामने एकदम से। सैटरडे स्पेशल छायालोक कार्यक्रम जाने अनजाने में मैं हूँ आपके संग, आपकी आरजे भारती रहूंगी 8 बजे तक, और 8:02 से आपके संग रहेंगे अमरनाथ। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे रात के 9 बजे तक, यानी 2 घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो भाई शनिवार राति मुझे नींद नहीं आती, लेकिन शनिवार शनिवार तो कोई कर रहा है, शनिवार शनिवार नहीं कर रहा है तो सैटरडे सैटरडे तो कर रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इसी गीत के संग, इंदीप बख्शी बादशाह और आकृत कक्कड़ के आवाज में। सैटरडे सैटरडे गीत के संग हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से ये ट्रैक, और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इसी गीत के संग। आप अपनी आरजे भारती के संग।

0: अब कुड़ी जो है वो सैटरडे सैटरडे ना करके शनिवार शनिवार भी कर सकती थी, लेकिन क्या है ना कि अभी ये ट्रेंड बन गया है, और ये ट्रेंड जो है अभी से नहीं, हमारे बिग बी के ज़माने से चला आ रहा है, और उन्होंने भी कई वक्त इस ट्रेंड को एकदम से सील किया है अपने ही गानों में। ट्रेंड क्या है, किस बात की बात करें हम बात कर रहे हैं कि हिंदी फिल्मों में और हिंदी गीतों में किस तरह से इंग्लिश वर्ड यानी अंग्रेजी शब्दों के जो प्रयोग हो रहे हैं वो किस तरह से बढ़ गए हैं और कितने ज़्यादा ट्रेंडी भी हो गए हैं। यानी कि आज हिंदी गीत में सिर्फ हिंदी और उर्दू के शब्द या अल्फाज नहीं बल्कि इंग्लिश के भी बढ़ते ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं और बड़ी ही सुंदर तरह से उनको पेश किया जाता है। जैसे कि अभी अभी हमने देखा कभी कभी गीतों के मुखड़े में तो कभी अंतरे में या कुछ पंक्तियां ऐसे ही डाल देते हैं और शुरुआत होती है इस गीत की और इस ट्रेंड की। तो भाई आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही फिल्मों की और कुछ ऐसे गीतों की जहां पर इंग्लिश वर्ड्स को अच्छी तरह से हिंदी शब्दों के साथ उसका मिश्रण किया गया है और कितना ट्रेंडी रहा था ये गीत। कौन सी फिल्म से है ज़रूर नाम बताएंगे आपको। अभी तो आपने सुना हम टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से, और हम जो बात कर रहे थे कि किस तरह से बिग बी ने शुरू किया था, तो भाई बिग बी की फिल्म से ही अमर अकबर एंटनी से ही सुनते हैं ये गीत, जहां पर उन्होंने कुछ बहुत बढ़िया बात की थी हाँ गीत के अंतरे में, वो भी इंग्लिश में। सुनते हैं इस वक्त किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की आवाज़ में ये गीत, कार्यक्रम छायालोक सैटरडे स्पेशल जाने अनजाने।
1: You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
2: What?
3: My name is Anthony Gonsalves.
2: Gonsalves?
3: Right. My name is...

दोस्तों, आज कार्यक्रम छायालोक जाने अनजाने में हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी फिल्मों की और उन गीतों की जहां गीत की शुरुआत या फिर गीत के किसी एक हिस्से में अंग्रेजी शब्दों का चयन किया गया है और उसने इस गीत को एक अलग प्रभाव दिया है और उसी के कारण शायद से गीत ज़्यादा प्रभावशाली बना है। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये वाना बी माई चमक छलो ऐसे नहीं बोलकर बन जा मेरी चमक छलो ऐसे होता तो शायद से कुछ अलग इफेक्ट आता। लेकिन इसी गूढ़ता को शायद से जानते हैं हमारे जो गीत बनाने वाले होते हैं और इसी कारण ये गीत इतने हिट भी साबित होते हैं। दोस्तों, आगे आने वाले गीतों में आपके लिए है डियर जिंदगी से सुनिधि चौहान की आवाज़ में जस्ट गुरु हेल दिल। ये था गीत का पहला, यानी कि पहली पंक्ति जो थी वो इसी शब्दों पर आधारित थी और खासकर फिल्म भी जो थी वो इसी मतलब थीम के इर्द गिर्द ही मंडरा रही थी। सुनते हैं इस वक्त ये गीत कार्यक्रम जाने अनजाने में।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक। जाने अनजाने
1: अजब प्रेम की गजब कहानी। जी हाँ, ऐसा ही गीत था नीरज श्रीधर, साथ में आतिफ असलम और

और साथ में अलीशा चिनॉय, तीनों की मैजिकल आवाज और एक साथ आई थी इसी फिल्म में। दोस्तों आज कार्यक्रम चार लोग जाने अनजाने में हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों में, हिंदी गीतों में कुछ ऐसे गीत या तो जिनके अंतरे में या फिर उनके पूरे गीत में कहीं कोई लाइन ऐसा इंग्लिश का आया है जिसने इस गीत को एक अलग माप बढ़ा दिया, उसका एक अलग वेटेज प्रदान की है। और कुछ ऐसे ही गीतों को हमने इस वक्त सुना, और अभी जो गीत आप सुनेंगे वो है नरेश अय्यर और मोहम्मद असलम की आवाज़ में आई एम अ रिबेल। जी हाँ, रंग दे बसंती फिल्म का ये ट्रैक जो आई एम अ रिबेल बोलकर फिल्म की जो कथा है उस कथा को किस तरह से आगे बढ़ाया है और किस तरह से यंगस्टर्स की मस्ती को भी किस तरह से वो रिबेलियस हो जाते हैं कभी कभी, और मस्ती के साथ साथ उनको अपनी जिम्मेदारियों का भी ख्याल रहता है, इसी गीत को समझाया गया है इस गीत में। नरेश अय्यर और मोहम्मद असलम ऑब्वियसली संगीतकार होंगे ही ए आर रहमान और गीतकार प्रसून जोशी।

भाई आज के यूथ को ये तो पसंद ही है, और कई वक्त टैलेंट कॉन्टेस्ट में मैं देखती हूँ उनको पुराने गीतों से भी उतना ही लगाव है, चाहे वो 90s के हो या फिर 60s के हो या फिर 80s के हो, किसी भी दशक के हो, वो गीत भी पसंद करते हैं और ऐसे थिरकने वाले गीत भी पसंद करते हैं। और शायद से इन्हीं इसी ट्रेंड के लिए कई वक्त इंग्लिश शब्दों का चयन किया जाता है हिंदी गीतों में, कभी रैप में तो कभी प्लेन सपाट गीतों में उसका चयन किया जाता है। तो दोस्तों इस वक्त तो नाचा नाची बहुत ज्यादा हो गई है, बादशाह जहां पर रहेंगे, साथ में बेनी दयाल रहेंगे, कपूर एंड सन फिल्म से आपने ये गीत सुना। और इस वक्त लेट्स टॉक अबाउट लव, नहीं मैं नहीं बोल रही, ये गीत के बोल है, लेट्स टॉक अबाउट लव, रफ्तार नेहा कक्कड़ की आवाज में। ये गीत है फिल्म बाघी से, और लेट्स टॉक अबाउट लव जब हो रहा है तो साथ में मांझ भी हैं उनके, बागी फिल्म के इस गीत के भी गीतकार रफ्तार और सबीर खान हैं। और सुनते हैं इस वक्त ये ट्रैक सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम छाया लोग सैटरडे स्पेशल जाने अनजाने में।

याद रखिए दोस्तों, गीतों ने अपना अंदाज नहीं बदला है, बस ये होते हैं कुछ कुछ गीत ऐसे बनाए जाते हैं जहां हम युवाओं के साथ कनेक्ट करते हैं, और कभी कभी इन गीतों को विदेशों में भी उनके इंग्लिश वर्ड्स के कारण होने के कारण बहुत सराहा जाता है। हालांकि म्यूज़िक तो म्यूज़िक होता है, चाहे कोई भी धुन हो, अगर वो दिल को टच करता है तो वो ज़रूर सबको पसंद आता है। आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कुछ ऐसी हिंदी फिल्मों से गीतों की जहां हम सुन पाते हैं कुछ ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड्स उसी गीतों में, और कई गीतों की हमने बात की, चर्चा की है, लेकिन ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, विशाल ददलानी और डोमिनिक स्ट्रेजो की आवाज़ में धूम फिल्म का टाइटल ट्रैक। जी हाँ, धूम 2 का टाइटल ट्रैक, जिसके गीतकार हैं आसिफ अली बैग और संगीतकार है प्रीतम। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक, सैटरडे स्पेशल, जानी अनजानी।

दोस्तों, आप थे अपनी आरजे भारती के संग और ठीक 8:02 पर आपके संग रहेंगे कार्यक्रम छाया लोक सैटरडे स्पेशल जाने अनजाने में अमरनाथ, और रहेंगे रात के 9 तक लेकर इस सुरीले कार्यक्रम को जिसका नाम है छाया लोक। इसी के साथ अपनी आरजे भारती को दीजिए अभी के लिए यहाँ पे इजाजत, लेकिन दूसरे घंटे में छाया लोक का सफर जारी रहेगा। जाते जाते आप सभी के लिए इस वक्त सोनू निगम और किली मोनो की आवाज में ब्लू फिल्म का

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: छायालोक के इस दूसरे भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, और आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो वाला, मैं अमर।

तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस एक छोटी सी ख्वाहिश है, जब भी मेरी याद आए तुम्हें, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए। तुम मिले तो लगा जैसे कोई अधूरी दुआ पूरी हुई, दिल को जैसे उसकी खोई हुई वजह मिल गई। अब जिंदगी से और क्या मांगू, जब मेरी खुशी को उसकी खूबसूरत वजह मिल गई।

मैंने भी सोचा नहीं था कि ठीक 8:21 पर भी मैं आपके साथ आज आ पाऊंगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट मैंने मैनेज किया और कहा कि नहीं, मेरे श्रोता जब हमें सुन रहे हैं तो फिर मेरा जाना तो बहुत ज़रूरी है, और मैं आ गया। और जब आ गया तो फिर 8:02 से छायालोक के दूसरे भाग में मैं हूँ आपके साथ, आपका रेडियो वाला दोस्त मैं अमर। सुनते रहिए और साथ रहिए, अभी वक्त काफ़ी बाकी है।

उम्र के साथ मोहब्बत कम नहीं होती, बस उसे जताने की आदत बदल जाती है। पहले तुम्हें देखने की चाहत थी, अब तुम्हें समझने की चाहत होती है। तुमसे कोई शिकायत तो नहीं, बस एक छोटी सी ख्वाहिश है, जब भी मेरी याद आए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए।

रात की खामोशी में जब तुम्हारी याद आएगी, चांदनी भी जैसे कुछ कहने लग जाएगी। पता नहीं मोहब्बत है या तुम्हारा असर, तुम्हारा ख्याल आते ही दिल मुस्कुराने लग जाएगी। आज फिर तुम्हें सोचते सोचते रात गुजर जाएगी, तुम्हारी याद मेरे दिल में चुपचाप उतर आएगी। तुम सामने रहो ना रहो, करीब लगती हो, शायद यही मोहब्बत है जो दूरी में भी पास लगती है।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: जाने अनजाने

बिल्कुल नहीं, किसी की जान नहीं जाने वाली है, सब कोई स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और सबसे बड़ी बात कि कल संडे है, यानी कि वीकेंड को अच्छे से आज बिताइए और कल संडे अपने परिवार के साथ बिताइए, अपने दोस्तों के साथ बिताइए और बहुत ही हेल्दी स्टाइल में बिताइए। और अगर मौका मिले दुआओं का तो एक छोटी सी दुआ अपने इस रेडियो वाले दोस्त के लिए। जी हाँ, मैं था आपके साथ अब तक, आपका रेडियो वाला दोस्त, मैं अमर।

0: This IT 나고야.
1: हमारी संस्कृति हमारी परंपराओं में हमेशा पूरी दुनिया को एक साथ लाने की बात कही गई है और स्पोर्ट्स यानी खेल शायद उसका सबसे बेहतरीन जरिया है।
2: एक गेंद हवा में उठती है, एक दौड़ शुरू होती है और शुरू होती है खिलाड़ियों की जद्दोजहद। दर्शकों की नजरें गेंद पर टिकती हैं, सांसें थम जाती हैं और फिर एक पल आता है जाने कितनी धड़कने एक लय पकड़ लेती है और जीत की खुशी में जाने कितने चेहरे एक साथ खिल उठते हैं। शायद खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। दुनिया में कितनी ही दूरियां हैं, कितने मतभेद हैं, कितनी दीवारें हैं, लेकिन खेल एक ऐसा जरिया है जो सबको एक साथ एक मंच पर ला खड़ा करता है। और एशियन गेम्स की तो शुरुआत ही इसी सोच के साथ हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध की उथल पुथल से जूझ रही इस दुनिया के तमाम देश जब 1948 के लंदन ओलंपिक्स में एक साथ आए तो खेलों की सबको एकजुट करने की ताकत को गुरुदत्त सोढ़ी ने महसूस किया और सपना देखा एशिया के सभी देशों को ठीक इसी तरह एक मंच पर लाने का। इसी विजन के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की अगुवाई में भारत ने पहल करी और 1951 में नई दिल्ली में पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ।
1: आज 75 वर्षों बाद भी ये मंच एशिया को यानी दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है
2: और इसका एहसास आज जापान के पालोमा मिज़ुहू स्टेडियम में हुआ जब एक भव्य उद्घाटन समारोह में 45 अलग अलग देशों के एथलीट्स

0: एक साथ आए, सबकी भाषाएं अलग, पहचान अलग, रंग रूप अलग, खान पान अलग, इतिहास अलग, लेकिन खेल के इस मंच ने सभी को एक साथ ला खड़ा किया।
1: मेजबान देश जापान ने तो अपना कल्चर शानदार तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें संगीत की एक अमित छाप, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एशियन गेम्स के बड़े मंच के जरिए एशिया के सभी देशों को एकजुट लाने का संदेश दिया। ओपनिंग सेरेमनी की थीम थी हार्मोनिक हार्ट बीट। यही नहीं, मंच भी दिल के आकार का था, जहां एक एक करके सभी देशों ने अपने अपने देश का ध्वज लेकर मार्च पास्ट किया।
0: उद्घाटन समारोह में भारत की एंट्री भी खास आकर्षण का केंद्र बनी। पेरिस में दो ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर और स्टार कबड्डी खिलाड़ी भारतीय टीम के उप कप्तान पवन सहरावत को मौका मिला भारत के ध्वजवाहक बनने का। दोनों हाथ में तिरंगा लिए भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए नजर आए और पीछे भारत के खिलाड़ी भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सुनाई दिए।
1: भारतीय खिलाड़ियों में देश का जोश, गौरव और भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक साफ नजर आ रही थी। खास तौर पर भारतीय दल के परिधान ने सभी का ध्यान खींचा। महिला खिलाड़ी नेवी ब्लू कलर की साड़ी में गुजराती स्टाइल के पल्लू के साथ नजर आई। पुरुष खिलाड़ियों ने नेवी ब्लू कलर का बंद गला परिधान पहना था, जिसकी शोभा भारत के तिरंगे के तीन कलर बखूबी बढ़ा रहे थे। इस आधुनिक अंदाज ने भारतीय दल की प्रस्तुति को अलग पहचान दे दी। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाते भारतीय खिलाड़ी जब स्टेडियम में पहुंचे, तो उनके परिधान में भारतीय परंपरा और आधुनिक खेल भावना का संगम दिखाई दिया और हमारे दोनों ध्वजवाहकों के नेतृत्व में भारतीय दल की तस्वीर एशियन गेम्स के मंच पर भारत की पहचान और आत्मविश्वास को सामने रखती नजर आई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख जोवान बिन हमाद अल थानी ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल के जरिए सभी देशों को एकजुट करने की बात कही।
2: Throughout the continent, across all nations, big and small, from various cities to rural villages, millions of young people are watching. They no longer yet know what they're capable of. But they're watching you, they're learning from you, they are hearing the gospel. And watching you on this stage speaks to them about what is possible. What can we achieve when we push the limits of human potential? And what it means to do so with fairness and respect. This is the spirit of nature.
1: समारोह में टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी भी हुई। कमाल की बात है कि खेलों का शुभांकर है होने हॉन, जिसका नाम पारंपरिक जापानी शब्द से आता है, अर्थ है फ्लेम यानी ज्योति।
0: समारोह में सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शपथ ली। रेफरी, अंपायर और खेल निर्णायकों ने भी निष्पक्ष होने की शपथ ली। 2026 में कुल 43 खेल हैं और 469 मेडल दांव पर हैं। ज्यादातर खेल नागोया शहर और आईची प्रेफेक्चर में होंगे, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो और फुटबॉल का खेल ओसाका में खेला जाएगा। लगभग 17,000 एथलीट

0: इस बार एशियन गेम्स में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। औपचारिक तौर पर भले ही एशियाड की शुरुआत आज हुई है, लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट और टिकबॉल के कुछ मुकाबले बीते हफ्ते खेले जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब तक हुए मुकाबलों की।
1: सबसे पहले बात टेकबॉल की। टेबल टेनिस की तेजी और शरीर के हर मूवमेंट पर शानदार नियंत्रण, इन तीनों का रोमांच अगर एक खेल में देखने को मिले तो वो होता है टेकबॉल। तेजी से लोकप्रिय हो रहा यह अनोखा खेल पहली बार आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है। यानी इस बार एशियाई खेलों में टेकबॉल के इतिहास पर पहला अध्याय लिखा जा रहा है। टेकबॉल की शुरुआत हंगरी में हुई, जिसे घुमावदार टेबल पर फुटबॉल के साइज 5 की गेंद के साथ खेला जाता है। खिलाड़ी हाथ और बाजुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैर, जांघ, छाती, सिर और कंधे जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में गेंद को नियंत्रित करते हुए उसे विपक्षी की तरफ भेजना होता है। एक खिलाड़ी या टीम को गेंद को वापस भेजने से पहले अधिकतम 3 टच मिलते हैं और एक ही बॉडी पार्ट से लगातार 2 बार गेंद को छूना फाउल माना जाता है। डबल्स खिलाड़ियों के बीच तालमेल और टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में भारत की भी टेकबॉल में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। भारत के लिए एशियन गेम्स एक नई शुरुआत लेकर आया। भारत टेकबॉल दल में क्विंसी डिसूजा, मोहम्मद अनस, इमरान बेग और डेकलॉन मार्शल गोंसाल्वेस शामिल हैं। भारत ने पुरुष डबल्स, महिला सिंगल्स और मिक्स डबल्स में चुनौती पेश की। पुरुष डबल्स में अनस बेग और डेकलॉन गोंसाल्वेस की जोड़ी को ग्रुप स्टेज में वियतनाम और दक्षिण कोरिया के खिलाफ दोनों मुकाबलों में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा और उनका अभियान यही समाप्त हो गया। लेकिन भारत की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। महिला सिंगल्स में क्विंसी ने शानदार शुरुआत की। उन्होंने जापान की वर्ल्ड नंबर 7 और स्थानीय खिलाड़ी युइना सकामोटो को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इसके बाद कंबोडिया की ओएमियन डीवाई को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला इंडोनेशिया की इमा सुमाया से हुआ। क्विंसी ने पहला सेट 12-7 से जीत लिया, लेकिन सुमाया ने वापसी करते हुए अगला सेट 12-9 और निर्णायक सेट 12-8 से परिणाम किया। इस तरह क्विंसी फाइनल से चूक गए, लेकिन अब उनके पास ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत के लिए पदक जीतने का मौका है।
0: शुक्रवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैदान पर उतरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारत के खिलाफ जापान की मेजबान टीम थी। यूं तो जापान में क्रिकेट उतना लोकप्रिय है नहीं, लेकिन फिर भी अपने देश की टीम को देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में दर्शक पहुंचे। भारतीय दर्शक भी मैदान में हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की हौसला अफजाई करने पहुंचे। भारतीय टीम अभी अभी वुमेन्स एशिया कप जीत कर आई है और इसीलिए जापान पहुंच ट्रेनिंग करने का भी उन्हें समय नहीं मिला था। इसके बावजूद जैसी अपेक्षा थी, मुकाबला एक तरफा रहा। जापान को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद दिया और फिर श्री चन्नी की कमाल की गेंदबाजी के चलते भारत ने जापान की टीम को केवल 57 रन पर समेट दिया। शेफाली वर्मा के ताबड़तोड़ 40 की पारी के चलते भारत ने इस मुकाबले को आसानी से जीता। लेकिन कमाल की बात ये रही कि एशिया कप में जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला, उन खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश भारतीय टीम ने की। जी कामलिनी स्मृति मानधना की जगह ओपन करते हुए नजर आई, तो वहीं भारतीय फुटबॉल लीग नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आई। भारत इस जीत के बाद अब सेमीफाइनल में प्रवेश पा चुका है। आपको याद दिला दें कि पिछले संस्करण में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और अपना ताज बचाने के लिए भारत महिला क्रिकेट में शिरकत कर रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा कल यानी रविवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 भारत के सामने बांग्लादेश की टीम होगी। उससे पहले सुबह 5:30 श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर भारत कल जीतता है तो एक बार फिर क्रिकेट में महिला टीम का पदक सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरी तरफ टेकबॉल में भी कल 2 पदक आने की पूरी उम्मीद है। रविवार को सुबह भारतीय समय के अनुसार 6:30 क्विंसी डिसूजा महिलाओं के सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगी, जिसमें सामने होंगी जापान की युइना साकामोटो। उसके बाद ठीक 7:00 एक और मुकाबला खेलने के लिए क्विंसी मैदान पर उतरेंगी। इस बार चुनौती होगी मिक्स डबल्स की, जिसमें उनका साथ देंगे मोहम्मद अनस, इमरान बेग और सामने होने वाली है वियतनाम से आने वाली मिनटैंग निगुयेन और जिया ट्रिन की जोड़ी। ये मुकाबले नगोया सिटी स्पोर्ट्स सेंटर में खेले जाएंगे। टेकबॉल के अलावा रविवार को भारतीय प्रशंसकों की नजरें हॉकी के मैदान पर भी होंगी। पुरुषों की हॉकी टीम से एक डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद अब उम्मीदें बहुत ज्यादा गहन हैं, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने का मतलब सिर्फ अपना ताज बचाना नहीं है, बल्कि एलए 2028 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करना भी है, और इसीलिए गोल्ड मेडल लाना जरूरी है। भारतीय टीम यूं तो एशिया में बादशाह मानी जाती है और इसीलिए गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार भी है, लेकिन कुछ और टीमें भी हैं जो उनको चुनौती देने का दमखम रखती हैं। और बताते हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल।
2: दोनों और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा। ताकि और जापान की टीम इस बात को सोच रही होगी कि जापान इज अ होस्ट कंट्री, ऑल्सो पाकिस्तान भी है उधर, एशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में चल रहा होगा नेशनल गोल्डन चांस एनीबडी हु विल्स द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कॉम्पिटिशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर ये बात है गोल्ड का भी ओलंपिक गेम्स उसका स्तर अलग है, यहाँ का स्तर अलग है। मैं चाहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रांगेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम ये गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी। और विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो मगर हर टीम

0: गया तो ये जो 12 टीमों में से 4 टीम है ऐसा चाइना है बिल्कुल सब कुछ फाइट है तो इसमें यही है कि हमारा अपर हैंड जो है मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे।
1: कल भारतीय पुरुष टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी जीपू प्रेफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे सामने पूल ए के मुकाबले में इंडोनेशिया की टीम होने वाली है। देखना होगा कि हरमनप्रीत सिंह के ट्रैक फ्लिक क्या एक बार फिर भारत के कैंपेन का आगाज जीत के साथ करेंगे। जहां पुरुषों से उम्मीदें पुरजोर है महिलाओं से भी अपेक्षाएं कम नहीं है। भारतीय वुमेन्स टीम ने हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था जिसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि एशियन गेम्स में भी पोडियम फिनिश के लिए भारतीय टीम फर्म फेवरेट है। पूल बी में भारतीय टीम है और कल पहला मुकाबला खेलने वाली है। सुबह 7:30 बजे उज्बेकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत उसी स्टेडियम में होगी। हॉकी के बाद नजरें होंगी बैडमिंटन के कोर्ट पर जहां पर वुमेन्स टीम इवेंट का पहला मुकाबला कल खेले जाने वाला है। भारत के सामने कजाकिस्तान की टीम है और भारतीय टीम में अनुभव और युवा जोश का एक अच्छा मिश्रण है। जहां 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु पर तो स्पॉटलाइट होने ही वाली है तो वहीं उन्नति हुड्डा देविका सिहाग और तन्वी शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ईशानी बरुआ कावित्रिया सेल्वम सिमरन सिंघी और तनिषा क्रास्टो भी टीम का हिस्सा है। साथ के साथ BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल दिलाने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। इस फिक्स्चर में 5 बैडमिंटन मुकाबले खेले जाएंगे जिसमें से 3 में जीत हासिल कर आप पूरे मुकाबले को जीत जाएंगे। बैडमिंटन के बाद नजरें होंगी टेबल टेनिस पर। टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जाने वाले हैं स्काई हॉल में और सुबह 9 बजे सबसे पहले भारत की पुरुष टीम उतरेगी मैदान पर। नाना सेकरम साथियान हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की ओलंपिक्स के अनुभव वाली तिगड़ी तो है ही साथ के साथ मानुष शाह और पायस जैन भी इस टीम का हिस्सा है। कल भारत का पहला मुकाबला इंडोनेशिया के खिलाफ है। उसके बाद 3 बजे ये टीम दोबारा कोर्ट पर उतरेगी ईरान से टक्कर लेने। महिला टीम का भी कल एक मुकाबला खेला जाएगा भारतीय समय अनुसार 12:30 पर सिंगापुर से भारतीय टीम लोहा लेगी। श्री जाकुला यशस्वनी घोरपड़े दिया चितले सिंड्रेला दास के साथ पिछले एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली सुकीर्ता मुखर्जी टीम का हिस्सा है। चलेंगे शूटिंग रेंज की तरफ जहां पर 10 मीटर एयर राइफल में महिलाओं की इंडिविजुअल प्रतियोगिता से आगाज होगा और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी विदर्शा विनोद सोनम मास्कर और इलावनिल मलारीवाल। फिर ये तिगड़ी 10 मीटर एयर राइफल की टीम प्रतिस्पर्धा में भी शिरकत करते हुए नजर आएगी।

और खेलों की जापान की धरती और खासकर नागोया, जहां इतिहास में समुराई की तलवार, अनुशासन और युद्ध कौशल की अपनी अलग पहचान रही है। ऐसे माहौल में जब एशिया के खिलाड़ी खेलों के सबसे बड़े मंच पर आमने सामने हैं, तो मार्शल आर्ट से जुड़े खेलों का रोमांच भी खास हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ वुशु से लेकर एमएमए तक की। एक तरफ वुशु में भारतीय खिलाड़ी अपनी तकनीक, गति और ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ

0: वरुण सान्याल पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगे। वो दो बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं और जनवरी 2026 में चीन में हुई एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। वहीं सुचिका तारियाल महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। सुचिका इससे पहले 2022 हांगझोंग एशियन गेम्स में कुराश में भारत के लिए खेल चुकी है। और अब बात सिर्फ एक मुकाबले की नहीं, ये उस खेल के इतिहास का हिस्सा बनने की है जिसने एशियन गेम्स के मंच पर पहली बार दस्तक दी है। अब बात करते हैं वुशु की। वुशु के मुकाबले सुबह से ही शुरू हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों में पदक की चुनौती पेश करेंगे। इन्हीं में वुशु भी शामिल है, जहां भारत की नजरें एक पदक मुकाबले के साथ साथ सांडा के नॉकआउट मुकाबले पर रहेंगी। वुशु के मुकाबले नागोया के आईची प्रीफेक्चुरल मार्शल आर्ट्स हॉल में खेले जाएंगे। भारत की ओर से सबसे पहले मैदान में उतरेंगे सूरज सिंह। सूरज सिंह सुबह 5:35 पर वुशु के चांग क्वान टाउलो फाइनल में अपना प्रदर्शन करेंगे। ये सीधे तौर पर मेडल इवेंट है, इसलिए भारतीय प्रशंसकों की नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी। चांग क्वान वुशु की ताउलो यानी रूटीन आधारित स्पर्धा है, जिसमें खिलाड़ी अपनी तकनीक, संतुलन, गति और कलात्मक प्रस्तुति के जरिए अंक हासिल करते हैं। सूरज सिंह के लिए यह मुकाबला एशियन गेम्स में भारत के वुशु अभियान को पदक के साथ आगे बढ़ाने का मौका है। इसके बाद दोपहर में सांडा में भारत के दो खिलाड़ी नॉकआउट मुकाबलों में उतरेंगे। महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में अपर्णा का सामना ईरान की सुगंध सिकाई चेतन से होगा।
1: तो बैडमिंटन कोर्ट से लेकर हॉकी के मैदान तक, क्रिकेट के स्टेडियम से लेकर टेबल टेनिस के टेबल तक, स्विमिंग पूल से लेकर शूटिंग रेंज तक, हर जगह जहां भारतीय एथलीट्स शिरकत करते हुए नजर आएंगे वहां हमारी नजर रहेगी। आकाशवाणी लगातार एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से आपको अवगत कराता रहेगा। आवरली लाइव अपडेट्स के साथ हम कल सुबह 9:30 आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल एडिटर वंदना भारद्वाज और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दर्पण दिखिया और कविता शर्मा को दीजिए इजाजत।
2: एशियन गेम्स 2026 आईसी नगोया।